0: समय यसबेला बिहानीको 8 बज्न लागिरहेछ। अब अघिल्लो क्रममा समय भइरहेछ समाचारको। केही क्षणमै दिल्ली केन्द्रको समाचार यस केन्द्रबाट रिले गरी सुनाउनेछौ। जोडिरहनु होला आकाशवाणीसँग।
1: मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सिंह कश्यप

0: दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को फोर लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज पीसीपीआईआर और सरिगाम जीआईडीसी में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड़ में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
2: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना

0: है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
1: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के दूसरे सर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
2: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा ना हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and Constitutional Expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says US pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch-rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament in Japan today. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in road, power and industrial sectors. Mr. Modi will first visit Hazira and will review the ongoing industrial and infrastructure projects before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stones for various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. A report from our correspondent.
5: In a major boost to regional infrastructure, Prime Minister Narendra Modi will dedicate key packages of 8-lane Vadodara-Mumbai Expressway to the nation today, significantly enhancing connectivity between Gujarat and Maharashtra. The Prime Minister will also lay the foundation stone for the 4-laning of critical sections of National Highway 56 to improve access to tribal regions and Statue of Unity. Catering to public welfare, the Prime Minister will also inaugurate a modern 200-bedded ESIC hospital in Surat, equipped with round-the-clock emergency and trauma care. In addition to this, several critical utility and industrial infrastructure projects will also be launched today, including the transmission network expansion in Gujarat, advanced effluent disposal system at Dahej, and Sarigam GIDC modern power distribution upgrades in Valsad. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
4: Prime Minister Modi has called upon athletes participating in World Yogasan Championship to become global ambassadors of the Ayush Ministry's Yog 365 campaign when they return to their home countries. Speaking at the opening ceremony of the championship in Ahmedabad, Mr. Modi said the Ministry of Ayush has launched the Yog 365 campaign to encourage year-round engagement with yog and promote healthier lifestyles across communities.
6: भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने योगा 365 अभियान शुरू किया है। मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
4: The Prime Minister said the championship represented more than a sporting competition and offered an opportunity to spread the broader message of yoga worldwide.
6: योगासन स्पोर्ट्स का एक और पक्ष है। हम जानते हैं कि हर बड़ा स्पोर्ट अपने साथ एक पूरा इकोसिस्टम लेकर आता है। ये रोजगार के नए अवसर पैदा करता है। इसलिए जैसे-जैसे योगासना स्पोर्ट्स का विस्तार होगा, वैसे-वैसे इससे जुड़ी नई संभावनाएं भी बढ़ेगी। ये खिलाड़ियों के लिए नई कैरियर अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। यह ट्रेनर्स, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और इवेंट मैनेजर्स के लिए भी नए अवसर बनाएगा।
4: Reserve Bank of India, RBI, will announce its bi-monthly monetary policy today. RBI Governor Sanjay Malhotra will announce the decisions made by the Monetary Policy Committee at 10 a.m. in Mumbai. The six-member MPC started its three-day deliberations on Wednesday. In April, the Reserve Bank had kept its key policy rate unchanged. Here is more from our correspondent.
0: The government has set consumer price index plus inflation target at 4% with upper tolerance of 6% and a lower tolerance level of 2% for the central bank. The CPI rose slightly to 3.48% in April, mainly due to higher prices of gold and silver jewelry, as well as some kitchen items. As the CPI is within the tolerance level, economists are expecting that the key interest rate will be kept unchanged at 5.25%. It also says that the central bank will adopt a cautious approach in view of West Asia conflict, posing challenges for the inflation as well as economic growth. Jivan Bhavsar, Akashwani News, Mumbai.
4: Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passed away in New Delhi yesterday following a prolonged illness. Dr. Kashyap was part of the high-level committee headed by former President Ramnath Kovind to prepare a legal framework on simultaneous elections. Author of over 100 books, he served as the Secretary General of Lok Sabha from 1983 to 1990. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the passing of Dr. Kashyap. The Appointments Committee of the Cabinet has approved a one-year extension for Tarun Kapoor, a retired 1987 batch IAS officer, as advisor to Prime Minister Narendra Modi. The Department of Personnel and Training has informed that Mr. Kapoor's extended tenure in the Prime Minister's office takes effect on the 10th of this month for a further period of 1 year. The Appointments Committee of the Cabinet has approved the appointment of Neelkant Mishra as Executive Director, World Bank Headquarters, Washington, D.C. for a tenure of 3 years. The Department of Personnel and Training has informed that the tenure of Parameshwaram Iyer has also been extended till the new incumbent assumes charge. The NDA alliance in Andhra Pradesh has decided to allot three of the four vacant Rajya Sabha seats to the Telugu Desam Party TDP and one seat to the Janasena Party. The decision was announced by Chief Minister N. Chandrababu Naidu after a meeting of NDA alliance partners held at its camp office in Amravati the previous night. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Russian President Vladimir Putin has hailed Moscow's strategic partnership with New Delhi and asserted that Western attempts to force India into scaling back its cooperation with Russia are futile and damaging to global stability. In an interaction with the heads of leading global news agencies, Putin lauded India's economic growth and its independent foreign policy and said Russia is determined to expand its economic engagement with the country. The Russian president said that India's diplomatic engagement with the U.S. does not hinder or undermine its time-tested relationship with Russia. He said Russia considers India as a reliable partner and it sees no negative consequences from New Delhi's bilateral relations with any other country. The Russian president also said that Russia proposed to India to work jointly on manufacturing the fifth generation Su-57 fighter jet. Putin added that his country is ready to provide India with critical technologies for major defense platforms and weapons. World Environment Day is being celebrated across the globe today. It has been observed on the 5th of June every year since 1973 as part of the United Nations Environment Program to build awareness to save life on Earth. A report.
3: The day is observed to raise global awareness to take positive environmental action to protect nature and the planet Earth. On the occasion of World Environment Day, Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav, and Minister of State, Kirti Vardhan Singh, will participate in a tree plantation program at Namo Oxygen Park at Maidangadi in the national capital under the Ek Ped Maa Ke Naam campaign. Several union ministers, chief ministers, ministers, MPs, MLAs will participate in World Environment Day events at the state level. The day raises awareness, mobilizes action and promotes environmental sustainability. Through campaigns, events and initiatives, the day inspires individuals and communities to make changes, fostering a sense of urgency and addressing environmental challenges for a sustainable future. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
4: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has extended greetings to the citizens on World Environment Day. In a social media post, Dr. Jaishankar encouraged everyone to work towards a greener, cleaner and more sustainable future. Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav also urged the countrymen to renew their pledge to remain inspired by nature for the climate and future. Union Minister Dr. Jitendra Singh will inaugurate two-day Lavender Festival at Bhadarwa in Jammu and Kashmir tomorrow under the theme Lavender Goes Global. The fourth Lavender Festival is being held at Government Degree College, Bhadarwa in Dodra district on June 6 and 7. The festival will witness enthusiastic participation of scientists, startups, aroma industries, entrepreneurs, policymakers, agribusiness stakeholders, students, progressive farmers and representatives of fragrance and wellness companies from across the country. A two-day national workshop on seafood exports will begin in Visakhapatnam today to discuss ways to increase India's seafood exports and strengthen the sector across the country. The workshop will focus on improving seafood exports through better infrastructure, value addition, certification, traceability and policy support. Discussions will also be held on increasing the participation of startups and small businesses in the export sector. The India Meteorological Department has issued an orange alert for thunder squall conditions today over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Jammu and Kashmir, Ladakh, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan and Uttar Pradesh. Heavy to very heavy rainfall is expected during the day in places over coastal Karnataka, Kerala and Mahe, north interior Karnataka and Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. Parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Andaman and Nicobar Islands, Tripura and Andhra Pradesh are also likely to experience rainfall today. According to the Met Department, Arunachal Pradesh is expected to witness thunderstorms and lightning today. Moving on to sports, India will take on arch rivals Pakistan in the semi-final of the Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament at Kakamigahara Hockey Stadium in Japan today. In the Women's Under-18 Asia Cup, India progressed to the semi-finals after remaining unbeaten in the group stage and will face China today. And now for a look at today's newspapers, it's over to VC Pramod.
7: Thank you, Naresh. On its front page under the headline Push for India-Venezuela Ties, Hindustan Times carries a picture of Prime Minister Narendra Modi and Venezuela's acting president Delcy Rodriguez. The paper says the two leaders held talks on forging a long-term energy partnership and collaboration in pharmaceuticals and critical minerals. India-Venezuela vow deeper energy ties, writes the Tribune. As a court sent Lokesh Bajaj, owner of the hotel where 21 people were killed in a devastating fire, to police custody, the Delhi government said it would withdraw its bed and breakfast policy, reports the Pioneer. A picture on its front page shows family members at the last rites of the victims of the fire under the headline, Eight Fires, One Broken Family. Still seething with anger at the Congress ditching it and switching over to the TVK immediately after the Tamil Nadu Assembly elections, the DMK announced its decision to boycott the INDIA block meeting slated for the 8th of June, says a top headline in the Statesman. Rebel Rita Brata's expulsion from TMC void, writes the Asian Age, quoting the West Bengal Assembly Speaker, adding that there are 61 MLAs in the rebel camp. And its editorial, titled Funding India's Climate Future, a $1 trillion question, the Hindu writes that India will require roughly $2.5 trillion by 2030 to meet its nationally determined contributions. Over the longer term, the cost of achieving net zero emissions by 2070 is estimated at $10.1 trillion, nearly three times India's current GDP. And finally, in what climbers are calling a miracle, 52-year-old Sherpa guide, who was presumed dead at Mount Everest after he vanished during descent on May 29th, was found alive 6 days after base camp, reports the Times of India under the headline, Sherpa survives 6-day Everest ordeal, sans food, oxygen. And with that, it's back to you, Naresh.
4: Thank you, Pramod. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasana Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says U.S. pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament in Japan today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
8: समय इस वेला बिहानी को 8 बजे 30 मिनट भई रहे छ यो हो आकाशवाणी को नेपाली प्रसारण सेवा मेरो जीवन को सबैभन्दा ठूलो खुशी भनेको नै बाल बालिकाहरूले पर्यावरणबाट सिक्दै प्रकृति को रक्षा गरेको हेर्नु हो म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि तपाईको साथ कोही होस् वा नहोस् तर तपाई अघि बढ्नुहोस् एक्लै अघि बढ्नुहोस् यसो भन्ने गर्छन् द माउन्टेन म्यान पद्मश्री डाक्टर गम्भीर सिंह योञ्जन एकजना शिक्षाविद पर्यावरणविद वनस्पतिविद तथा लेखक एक राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त विद्वान हिमाली क्षेत्रबाट प्रथम व्यक्ति जसले अनेकौं उपलब्धिहरू प्राप्त गरेर भारत सरकारद्वारा विगत केही दिन अघि मात्र पद्मश्रीद्वारा सम्मानित बन्न पुगे आज यिनै पद्मश्री द माउन्टेन म्यान डाक्टर गम्भीर सिंह योञ्जनको कथा समावेश गराइरहेकी छु कथा सफलताको आजको अङ्कमा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु हाम्रो कार्यक्रमको प्रतीक्षामा रहनुहुने सबै आदरणीय श्रोताहरूमा म रश्मि कालिबुङको सुदूर सिन्जीमा सन् 1939 जन्मेका डाक्टर गम्भीर सिंह योञ्जन एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व जसले यातायातको सुविधा बिनाको कठिन जीवनसँग सङ्घर्ष गरेर जीवनलाई एउटा शिखरमा पुर्यायो त्यस समय त्यहाँ वर्तमान समय झैँ यातायातको कुनै सुविधा थिएन तर यही नै उनको निम्ति एउटा वरदान साबित भयो, किनकि उनी स्कूल आउँदा जाँदा हुँदै प्रकृतिसित हातेमालो गर्ने र प्रकृतिलाई नजिकबाट जान्ने अवसर पाए। उनका मातापिताले उनलाई उच्च शिक्षा हासिल गरेर एक शिक्षित अनि सशक्त व्यक्तिको रूपमा हेर्न चाहन्थे, नभन्दै उनको अभिभावकको सपनाले उनलाई अघि डोर्याउँदै लग्यो। सन् 1957 डाक्टर योन्जनले कालेबुङको एक प्रसिद्ध विद्यालय एसयुएमआईबाट माध्यमिक तहको अध्ययन पूरा गरे। त्यसपछि उनको परिवारले उच्च शिक्षा हासिल गर्ने सल्लाह दिए उनलाई, तर त्यसताक कालेबुङमा कुनै महाविद्यालय थिएन, थियो त केवल दार्जिलिङमा मात्र, दार्जिलिङ सरकारी महाविद्यालय। यसो हुँदा अब उनी अघिका अध्ययनको निम्ति दार्जिलिङ जान पर्ने भयो। त्यस समय उनको जेठो दाजु दार्जिलिङमा पुलिसको नोकरीमा थिए। उनको दाजुले पनि उनलाई दार्जिलिङ आएर अध्ययन गर्ने प्रोत्साहन गरे। सन् 1950 सालमा कालेबुङबाट म्याट्रिकुलेसन उत्तीर्ण गर्ने प्रथम व्यक्ति उनकै दाजु थिए। योन्जनले अब दार्जिलिङ सरकारी महाविद्यालयबाट विज्ञान विषय लिएर अध्ययन सुरु गरे। सन् 1959 इन्टरमिडिएट साइन्स, त्यसपछि वनस्पति विज्ञान विषय लिएर बीएससी अनर्स गरेपछि सन् 1964 यही विषयसित स्नातकोत्तर पूरा गरे अनि त्यसै वर्ष उनी पहाडको एकमात्र प्रथम साइन्स लेक्चरर बनेका थिए। सन् 1962 1964 डाक्टर योन्जनले दार्जिलिङ सरकारी महाविद्यालयमा वनस्पति विज्ञानमा एमएससी अनि अनुसन्धान सम्मको कार्यक्रम आरम्भ गर्नुमा सहयोग पुर्याए, ताकि क्षेत्रवासीले उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न सकुन्। जब कुनै व्यक्तिमा सिक्ने क्षमता छ, आफ्नो क्षमतामा विश्वास छ र उच्च शिक्षा हासिल गर्ने दृढता लिएर अघि बढ्छ, तब उसले जीवनमा आफ्नो लक्ष्य अवश्य हासिल गर्न सक्छ, भन्छन् पद्मश्री डाक्टर जीएस योन्जन। सन् 1976 डाक्टर योन्जनले कोलकाता विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि पूरा गरेर उनी पहाडी क्षेत्रबाट वनस्पति विज्ञानमा विद्यावारिधि पूरा गर्ने प्रथम व्यक्ति बने। त्यसपछि उनले पुनः दार्जिलिङ फर्किने निर्णय लिए। यहाँ फर्किनुको उद्देश्य एउटै मात्र थियो कि पहाडी क्षेत्रका पछौटे वर्गका शिक्षाबाट वञ्चित छात्र छात्राहरूलाई पुनः शिक्षाको निम्ति प्रोत्साहित गर्नु र सबैलाई शिक्षित बनाउनु रहेको थियो। यो प्रयासमा उनी सफल पनि भए। केही समयको निम्ति दार्जिलिङ महाविद्यालयमा शिक्षा प्रदान गरे पश्चात उनी कालेबुङ फर्किए आफ्नो जन्मथलोतिर। उनी त्यहाँ कालेबुङ महाविद्यालयको प्राचार्यको रूपमा नियुक्ति भए। उनी कालेबुङ महाविद्यालयमा रहँदा आफ्नो शोध कार्यलाई निरन्तरता दिने सुनौलो अवसर पाए। उनले देश विदेश भ्रमण गर्ने अवसर पाए। उनले 3 देशहरूको भ्रमण गरे एक शिक्षाविदको रूपमा। भारतको प्रतिनिधि टोलीको रूपमा उनले विश्व पर्यावरण संरक्षण, जीव विज्ञान एवं ग्लोबल वार्मिङ जस्ता विषयहरूमाथि चर्चा परिचर्चाको विषयवस्तु रहन्थ्यो। उनी कालेबुङ महाविद्यालयमा प्राचार्यको रूपमा 12 कार्यरत रहे। एकजना सरकारी कर्मचारी भएर पनि विभिन्न क्षेत्रसित संलग्न थिए। ती जिम्मेवारीसँगै डाक्टर योन्जनले त्यस समयको जल्दो बल्दो समस्याहरू जस्तै सामाजिक, उच्च शिक्षा, आर्थिक आवश्यकतामाथि सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न सफल बनेका थिए। सन् 1978 1984 बीच इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन मुभमेन्ट वा पर्यावरण संरक्षण आन्दोलन गरेर पहाडी क्षेत्रमा रहेका वनलाई संरक्षण गर्ने आवश्यकता बोध गराउँदै लगभग 6 लगातार आन्दोलनपछि उनको यो आन्दोलन सफल भएको थियो। उनी भन्थे, हिमालयलाई बचाउनु भारतलाई बचाउनु हो। फलस्वरूप सन् 1985 सालमा दार्जिलिङ पहाडको 2 महत्वपूर्ण पर्यावरण क्षेत्र स्थापित गर्न सफल बने। एउटा हो सिङ्गलिला राष्ट्रिय उद्यान अनि न्यौरा भ्याली राष्ट्रिय उद्यान, जसलाई पूर्वी हिमालयमा बायोस्फियर रिजर्भ घोषित गरिएको थियो। उनकै प्रयासमा सन् 1962 सालदेखि दार्जिलिङ कलेजमा बोटानी अनि जियोलोजीको पोस्ट ग्रेजुएट क्लासहरू आरम्भ भएको थियो भने त्यस समयदेखि यता वर्तमान समयसम्म 55-56 वर्गहरूले एमएससी उत्तीर्ण गरेका छन् भने लगभग 1200 विद्यार्थीहरूले पोस्ट ग्रेजुएट ग्रहण गरिसकेका छन्। उनको जन्मथलो सिन्जी अनि वरिपरिका क्षेत्रहरूमा त्यस समय प्राथमिक पाठशाला, जुनियर हाई स्कुल, हाई स्कुलहरू थियो। तर देश विदेशका खबरहरू, विभिन्न घटनाहरू सम्बन्धी जानकारीहरूबाट वञ्चित रहन्थे। यसोसले डाक्टर योन्जनले मात्र होइन तर उनका परिवारले त्यस क्षेत्रमा एउटा पुस्तकालय निर्माण गर्ने निर्णय लिए, जसद्वारा त्यस क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई ठूलो सहयोग पुग्ने भयो। उनकै पिता आरवी योन्जनको नाममा एउटा पुस्तकालय स्थापित गरियो, जहाँ विभिन्न पुस्तकहरू लगायत विद्यार्थीहरूको निम्ति पाठ्य पुस्तक पनि उपलब्ध गराइयो। यो डाक्टर योन्जनको ठूलो योगदान थियो सिन्ची लगायत वरिपरिका क्षेत्रवासीहरूको निम्ति। कालेबुङ सहरदेखि 5 किलोमिटर पर सिन्देबुङ लगायत वरिपरिका गाउँमा कुनै प्राथमिक पाठशाला थिएन त्यस समय, र त्यहाँ एउटा पाठशालाको खाँचो रहेको तर पाठशाला निर्माणको निम्ति जमिनको आवश्यकता रहेकोले गाउँवासीहरूको अनुरोधमा उनको परिवारले पाठशाला निर्माणको निम्ति जमिन उपलब्ध गराइदिए र त्यहाँ प्राथमिक पाठशालाको निर्माण भयो, जुन आज डाक्टर योन्जनकी माताको नाममा सञ्चालित भइरहेको छ। यसको साथै 28 वर्षको लामो सङ्घर्षपछि कालेबुङको एक चर्चित पर्यटक स्थल डेलोमा एउटा विज्ञान केन्द्र वा साइन्स सेन्टरको स्थापनामा पनि उनको बहुमूल्य योगदान रहेको छ, जुन सन् 1981 सुरु भएको थियो भने 2008 यो पूरा भएको थियो। साथै उनले यस क्षेत्रका विभिन्न समस्याहरू सम्बन्धी साधारण जनताको शिक्षा हेतु विभिन्न लेखहरू साथै पुस्तकहरू पनि लेखे। उनले जम्मा 7 पुस्तकहरू प्रकाशित गरिसकेका छन्। साथै उनी प्रथम व्यक्ति हुन् जसले पर्यावरण बारे जागरूक गराउन विभिन्न अभियानहरू सञ्चालित गर्दै आइरहेका छन्। उनको सन् 1986 यस जागरूक अभियानको यात्रा आज पर्यन्त पनि यथावत नै छ। कालेबुङको सिन्जीमा जन्म ग्रहण गरेका डाक्टर योन्जनको प्रारम्भिक जीवन अनि शिक्षा पूर्वी हिमालयको समृद्ध सांस्कृतिक अनि पारिस्थितिक विरासतले ओतप्रोत रह्यो, तर शिक्षा जगत, पर्यावरण र नागरिक समाजमा दर्शकौंको सक्रिय सहभागिताले यो स्पष्ट हुन्छ कि यस क्षेत्रसित उनको लगाव उनको जीवनको मिशनलाई आकार दिदछ। पहाड़को अनौठो परिस्थितिक, वनस्पतिक अनि सांस्कृतिक सम्पदाको रक्षा अनि सम्वर्धन गर्नु। विज्ञानको प्राध्यापकको रूपमा उनले आफ्नो वैज्ञानिक गम्भीरता, प्रकृति प्रेम अनि अध्ययनको समर्पणले कैयौं पिढीका छात्र छात्राहरूलाई प्रेरित गरिरहेका छन्। एकजना शिक्षकको रूपमा उनको कार्यकाल केवल शिक्षणप्रति मात्र होइन तर पहाडी पर्यावरण, यसको वनस्पति, पारिस्थितिकी अनि मानिस तथा प्रकृति माझको गहिरो सम्बन्धप्रति प्रेरित गर्दछ। लगभग 12 वर्षसम्म कालेबुङ विश्वविद्यालयमा एक प्राचार्यको रूपमा अकादमिक दायित्व सम्हाले। उनी अकादमिक इमान्दारी र संस्थागत विकासको स्तम्भ रहे, साथै उनी क्षेत्रमा विज्ञान शिक्षाको गुणवत्तालाई दहरिलो बनाउनमा योगदान पुर्याए। वनस्पति विज्ञान उनको शिक्षाको आधार बनिरह्यो, तर पद्मश्री योन्जनको सोच पाठ्य पुस्तकहरू अनि प्रयोगशालादेखि निकै अघिसम्म फैलिएको थियो। उनले पर्यावरण विज्ञान, सतत विकास अनि ग्रामीण उत्थानमाथि अधिक ध्यान केन्द्रित गरे। उनको काम सधैँ जमिनी स्तरमा सामुदायिक आवश्यकताहरूसित जोडिएको हुँदथ्यो, विशेष रूपले दार्जिलिङ पहाड, कालेबुङ अनि सिक्किमको निम्ति। व्यापक रूपले एक पर्यावरण विशेषज्ञको रूपमा वर्णित डाक्टर योन्जन, जसको अध्ययन अनि पहलहरूको उद्देश्य अद्वितीय हिमाली पारिस्थितिकी तन्त्रलाई बुझ्नु र संरक्षित गर्नु थियो, उनले लेखेका 7 पुस्तकहरू पर्वतीय क्षेत्रहरूमा वनस्पति विज्ञान, पारिस्थितिकी अनि सतत जीवनको अन्वेषण गर्दछ। यी पुस्तकहरू हिमाली पारिस्थितिक तन्त्रमा रुचि राख्ने छात्रहरू, शोधकर्ता अनि स्थानीय मानिसहरूको निम्ति केन्द्रबिन्दु बनेको छ। सानैदेखि शिक्षा र प्रकृतिप्रति रुचि राख्ने डाक्टर योन्जनले आफ्नो जीवन विज्ञान, शिक्षा र पर्यावरण संरक्षण र समाजसेवाप्रति समर्पित गरे। उनले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र विकासलाई राष्ट्रिय सेवासँग जोडिरहेछन्। उनको दशकौंको योगदानको सम्मान स्वरूप भारत सरकारद्वारा देशको सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्रीद्वारा सम्मानित बने। यो सम्मानले प्रोफेसर योन्जन मात्र नभएर सम्पूर्ण भारतीय नेपाली तथा गोर्खा समुदायलाई गर्वको अनुभूति गराएको छ। भारतका एवं नेपाली समुदायका गौरव डाक्टर योन्जनलाई उनको यो महत्वपूर्ण उपलब्धिको निम्ति अभिनन्दन साथै उनको सुस्वस्थ र दीर्घायुको कामना गर्दछौं। हवस्त श्रोता, अब आजलाई भने कार्यक्रमबाट विदा माग्ने समय भइरहेछ र कार्यक्रमबाट विदा माग्छु प्रस्तुत लेखनाथ रायको साथमा म रश्मि। यस्तै प्रेरणादायी सफलताको कथासित भेट हुनेछ अर्को अङ्कमा। नमस्ते। कथा सफलताको यो कार्यक्रमको प्रसारणपछि अब अघिल्लो क्रममा आउनु श्रोता, केही क्षण आनन्द लिउँ लोकगीतबाट। स्वर छ बलराम थापाको।

0: यतिन्जेल श्रोताले सुन्नुभयो कार्यक्रम हाम्रो सरकार र अब भने आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रको हिन्दी समाचार समाप्त
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। चालू वित्त वर्ष के लिए दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से अल्पकालिक उधार दर या रेपो दर को 5.25% पर तटस्थ बनाए रखने का निर्णय लिया है।
2: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate under the LAF unchanged at 5.25%.
1: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति को 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। बैंक ने अनिवासी भारतीयों और प्रवासी भारतीयों द्वारा इक्विटी उपकरणों में निवेश की सीमा भी बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम श्री मोदी का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण है।
3: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
1: केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की औपचारिक घोषणा करेंगे। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये अत्याधुनिक एक्स बैंड डॉपलर मौसम रडार प्रणालियों और स्वचालित मौसम स्टेशनों के विस्तारित नेटवर्क के साथ मौसम संबंधी प्रेक्षणों को एकीकृत करेगा, जिससे वास्तविक समय में मौसम की निगरानी, पूर्वानुमान की सटीकता और पूर्व चेतावनी क्षमताओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के

व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: detailed assessment.
1: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है. इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है.
2: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है. बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है. बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे. श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे. दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे. हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.
3: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे. वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4-लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच में सुधार होगा. जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे. अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद.
2: प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी. इससे पहले पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 66% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे. इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है. केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज जम्मू में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की औपचारिक घोषणा करेंगे. ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया, इसलिए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे. आज विश्व पर्यावरण दिवस है. पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है. उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं. प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है. अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है

0: सभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खुण, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष पहली अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ. जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
4: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ ने जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
5: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे एस एन माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
6: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरण संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
7: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं।
8: लोकल फॉर भोकल है, दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है जो टिकाऊ किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक

0: पेड़ मां के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामेगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हामी आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रबाट बोलिरहेका छौँ, जो प्रसारण भइरहेछ एफएम 103.5 मेगाहर्जको तरङ्गमा। समय यस बेला अपरान्न 4 बज्यो र अब सुनौ हिन्दी वार्ताको कार्यक्रम।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी संचालिका सुरक्षित तामंग की ओर से स्वागत है हमारे आज की हिंदी वार्ता में। श्रोताओं, हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन। दोस्तों, वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन आज की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है और इसे हम सबसे बड़ी समस्या की ओर से भी देख सकते हैं। पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली अनियंत्रित वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। ये न केवल हमारे पर्यावरण को बल्कि मानव अस्तित्व को भी खतरे में डाल रहा है। जलवायु परिवर्तन के पीछे प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारण जिम्मेदार है, लेकिन आधुनिक युग में मानवीय गतिविधियां सबसे प्रमुख है। हम इस गतिविधियों को इस प्रकार से देख सकते हैं: जीवाश्म ईंधन का दहन, वनों की कटाई, प्लास्टिक का प्रयोग, इसी प्रकार कई प्रकार के कारणों को देख सकते हैं।

0: हमारी इस वार्ता को प्रस्तुत कर रही है जागृति गुप्ता। तो आइए दोस्तों इस कार्यक्रम को सुना जाए।
1: नमस्कार आदरणीय श्रोतागण, मैं जागृति गुप्ता एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हूँ। आज मैं एक ऐसे विषय पर अपने विचार साझा करने जा रही हूँ जो हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन। यह समस्या आज पूरी दुनिया

0: यह मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों, विशेषकर जीवाश्म ईंधन के जलने से होता है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है ऊर्जा उत्पादन, कारखानों और वाहनों के लिए कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस को जलाने से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। जंगलों को काटने से यह प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जमा हो जाती है। कृषि और पशुपालन के दौरान धान की खेती और मवेशियों के पाचन तंत्र से मीथेन गैस उत्पन्न होती है, जो एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण बना लेती है। यह आवरण सूर्य की गर्मी को पृथ्वी पर आने तो देता है, लेकिन उसे वापस अंतरिक्ष में जाने से रोकता है। इसका प्रमुख प्रभाव यह है कि तापमान को बढ़ने और जलवायु के असंतुलित होने से दुनिया भर में गंभीर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण कई प्रजातियों का आवास छिन रहा है, जिससे वे विलुप्त होने की कगार पर है। कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है और खाद्य सुरक्षा पर संकट पैदा हो रहा है। इस संकट से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना ताकि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जा सके आदि शामिल है। ग्लोबल वार्मिंग के तीन मुख्य कारण हैं: जीवाश्म ईंधन का जलना, वनों की कटाई और गहन कृषि। ये मानवीय गतिविधियां वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को बढ़ाती है। ग्लोबल वार्मिंग मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण समझा जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में वैश्विक तापन भी कहते हैं। इसका अर्थ है मानवीय गतिविधियों के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही निरंतर वृद्धि। इसके कारण जलवायु और मौसम के पैटर्न में भारी और खतरनाक बदलाव आ रहे हैं। तापमान में इस वृद्धि के गंभीर परिणाम देखे जा रहे हैं। आर्कटिक और एंटार्कटिक जैसे ध्रुवों पर बर्फ तेजी से पिघल रही है। ग्लेशियर पिघलने के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे तटीय इलाकों में बाढ़ और जमीन डूबने का खतरा पैदा हो गया है। बेमौसम बारिश, भीषण सूखा, जंगलों में आग और अत्यधिक तूफानों की बारंबारता में वृद्धि हुई है। जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारणों में जीवाश्म ईंधन के तहत बिजली और गर्मी पैदा करने के लिए कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जलाना, पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन जैसे कार, ट्रक, जहाज और विमान का प्रयोग करना भी शामिल है। सीमेंट, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सामान बनाने वाली फैक्ट्रियां बड़ी मात्रा में कार्बन और अन्य हानिकारक गैसें छोड़ती है। घरों को गर्म या ठंड रखने और बिजली के उपकरणों का अधिक प्रयोग करने से ऊर्जा की मांग बढ़ती है, जो अक्सर जीवाश्म ईंधन से पूरी होती है। अपशिष्ट और लैंडफिल अंतर्गत कचरे को लैंडफिल में डालने और उसके सड़ने से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जहरीली गैसें निकलती है। तेल और गैस उत्पादन के दौरान तेल निकालने और प्राकृतिक गैस के उत्पादन, खनन और पाइपलाइनों के दौरान मीथेन का भारी मात्रा से उत्सर्जन होता है। प्राकृतिक कारण अंतर्गत ज्वालामुखी विस्फोट और विकिरण में बदलाव और प्राकृतिक जंगल की आग जैसी भौगोलिक प्रक्रियाएं भी तापमान को प्रभावित करती है। आधुनिक जीवन शैली, अत्यधिक खरीदारी और प्लास्टिक जैसे गैर नवीकरणीय उत्पादों के इस्तेमाल से उत्पादन चक्र में भारी प्रदूषण होता है।
1: कार्यक्रम को थोड़ा सा विराम देते हैं, सुनते हैं ये गीत।

0: जानकारी अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के जनक जेम्स हेनसेन को माना जाता है, जिन्होंने बताया था कि 21वीं सदी में वैश्विक तापमान पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। वैश्विक तापक्रमण से तात्पर्य हाल के दशकों में पृथ्वी के समग्र औसत तापमान में हुई वृद्धि से है। प्राकृतिक प्रक्रियाएं हमेशा से पृथ्वी के तापमान और जलवायु को प्रभावित करती रही है, लेकिन हाल ही में पृथ्वी के तापमान और जलवायु में परिवर्तन की गति प्रकृति की व्याख्या से कहीं अधिक तेज हो गई है। पर्यावरण को मुख्य चार प्रमुख मंडलों या प्रकारों में क्रमश स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल में विभाजित किया जाता है। स्थलमंडल में पृथ्वी की ठोस बाहरी परत जिसमें चट्टाने, मिट्टी और पर्वत शामिल है, जबकि जलमंडल में पृथ्वी पर मौजूद सभी जल स्रोत जैसे महासागर, नदियाँ, झीलें और ग्लेशियर शामिल है। इसी प्रकार वायुमंडल में पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की परत जो मौसम और जलवायु को नियंत्रित करती है, जबकि जीवमंडल में पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल आपस में मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। इसमें सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव आते हैं। जलवायु परिवर्तन के बड़े पांच प्राकृतिक कारणों में सूर्य में परिवर्तन, ज्वालामुखियों से निकलने वाला धुआं, पृथ्वी की कक्षा में बदलाव और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर शामिल है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन आमतौर पर बहुत धीमी गति से हजारों या लाखों वर्षों में हुआ है। वैज्ञानिक साहित्य में इस बात पर व्यापक सहमति है कि हाल ही के दशकों में वैश्विक सतह के तापमान में वृद्धि हुई है और यह प्रवृत्ति मानव जनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण है। राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी वैज्ञानिक संस्था इस मत से असहमत नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के कार्य अंतर्गत वैश्विक तापमान वृद्धि के प्रभाव हर जगह दिखाई दे रहे हैं। ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र के स्तर का बढ़ना और चक्रवात, बाढ़ और सूखे जैसी चरम मौसमी घटनाएं अधिक बार होने लगी है। ये परिवर्तन न केवल मनुष्यों बल्कि वन्य जीवों और समुद्री जीवन के लिए भी खतरा है। ग्लोबल वार्मिंग का नंबर वन करण के तहत जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल और गैस वैश्विक जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान देते हैं, जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 68% और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का लगभग 90% हिस्सा है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से पृथ्वी ढक जाती है और सूर्य की गर्मी को रोक लेती है। वैश्विक ताप वृद्धि के कारण हर मिनट एक व्यक्ति की मृत्यु होने का अनुमान है, और यदि उत्सर्जन में तेजी से कमी नहीं आई तो यह संख्या और भी बढ़ सकती है। ब्रिटेन के मौसम विज्ञान कार्यालय द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए तैयार की गई रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई है कि 2026 और 2030 के बीच कम से कम एक वर्ष को अब तक का सबसे गर्म वर्ष साबित करने की 86% संभावना है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि 2030 तक दुनिया को लगभग निश्चित रूप से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सामना करना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक व्यापक खतरा है, जो एक खतरे को बढ़ाने वाले कारण के रूप में कार्य करता है। राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ाता है, सामाजिक तनाव को गहरा करता है और सामूहिक अत्याचार अपराधों के जोखिम को बढ़ाता है। बताया गया है कि भारत में 2026 की कड़ाके की ठंड, शीतलहर और कोहरा मुख्य रूप से फरवरी की शुरुआत तक समाप्त हो गई थी। फरवरी और मार्च के दौरान काफी सामान्य और हल्का हो गया था, जिसके बाद अप्रैल 2026 से ही भीषण गर्मी और लू यानी कि हीट वेव का दौर शुरू हो गया था। जब से मानव ने पृथ्वी पर जन्म लिया है, उसी समय से मानव का पृथ्वी के साथ गहरा संबंध बन गया है। मानव पर्यावरण के बिना अपनी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता है, क्योंकि मानव का संपूर्ण जीवन पर्यावरण से प्रभावित होता है। पर्यावरण के तहत वायु, जल, पादप, प्राणी जगत आदि सभी आते हैं। मानव अपना संतुलित विकास तभी कर सकता है जब वह पर्यावरण को संतुलित रखे। अतः मानव की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह पर्यावरण को संतुलित रखे। यदि मानव पर्यावरण को संतुलित रखेगा तो पर्यावरण संपूर्ण जैव संपदा का संतुलन बनाए रख सकेगा। ग्लोबल वार्मिंग का प्राथमिक कारण प्रदूषण को माना जाता है, क्योंकि अनेक प्रकार के प्रदूषणकारी पदार्थ ही पृथ्वी की सतह के ऊपर वातावरण में अनेक ग्रीन हाउस गैसों को इकट्ठा करते रहते हैं। सरल शब्दों में ग्लोबल वार्मिंग का आशय पृथ्वी के तापमान में होने वाली निरंतर वृद्धि से है, जिसके कारण जलवायु में परिवर्तन आ जाता है, वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कृषि पर भी देखा गया है। इसके कारण कृषि क्षेत्र में गेहूं के उत्पादन में भारी गिरावट देखी गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जलवायु परिवर्तन के कारण खेती पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव का पता लगाने के लिए बड़ी परियोजनाएं शुरू की है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव सबसे ज्यादा मानव स्वास्थ्य पर पड़ेगा, जिसमें गर्मी बढ़ने से मलेरिया, डेंगू और येलो फीवर जैसे संक्रमण रोग अधिक फैलेगा। अधिक तापमान बढ़ने से आने वाले समय में लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और खाने के लिए ताजा व स्वच्छ भोजन और श्वास लेने के लिए शुद्ध हवा भी नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी, ऐसा बताया गया है। पर्यावरण पर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाली हानिकारक गैसों और अपशिष्टों को पर्यावरण में फैलने से रोकने की पहल करनी चाहिए। वनों को नष्ट होने से बचाना चाहिए। वृक्षों की कटाई पर रोक लगाकर और नए पेड़ लगाकर पर्यावरण को हरा भरा बनाना चाहिए। पर्यावरण पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए हानिकारक गैसों के प्रयोग को कम करें और प्रदूषण फैलाने वाले उपकरणों के प्रयोग पर रोक लगाए। विद्युत ऊर्जा के स्थान पर इसके विकल्पों के रूप में सौर ऊर्जा, गोबर गैस प्लांट्स लगाने चाहिए, जिससे पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है। धन्यवाद
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक हिंदी वार्ता जिसका विषय था ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन, और इसे प्रस्तुत कर रही थी जागृति गुप्ता। आशा करती हूँ आप सभी को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ आपकी संचारिका सुरक्षिता अमन को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: काका पुरक हुन् है र अब दुवैले अब के गर्छ भनेर भन्दाखेरि मिलेर चाहिँ अब त्यसको परिणाम दिन्छ क्या.
1: मैले पनि पहिला हार्डवर्कबाट नै सुरु गरेको
0: हो, सुरुवात त गर्नै पर्यो नि त, बिगिनिङ नगरेको त इन्डिङ त हुँदैन है. अन्त म स्मार्ट वर्क मात्रै गर्छु भनेर हार्डवर्क चाहिँ छैन, लेबर चाहिँ छैन भने त त्यो भएन नि त. पहिला लेबर गर्नु पर्यो अनि पो है सिकिन्छ.
1: नानीहरूले वर्षौँ वर्षौँ अब हार्डवर्क अर्थात् त्यही किताबलाई मात्रै पढेर होइन, तर किताब पढिसके पश्चात चाहिँ त्यसलाई सठिक प्रकारले कसरी अप्लाई गर्ने, कसरी त्यसको प्रयोग गर्ने, त्यो चाहिँ स्मार्ट वर्क उनीहरूले सिक्नु पर्ने रहेछ है. र सरकोबाट चाहिँ हामी एकदमै छर्लङ्गै भयौँ. र श्रोता र आज हामीले अति नै गहन विषय, अति नै चाखलाग्दो विषयमाथि कुराकानी गऱ्यौँ. अनि आजको अतिथिको रूपमा हामी माझ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो शिक्षक धीरज रिजालज्यू, र उहाँले आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पढ्ने पद्धति अर्थात् लर्निङ मेथड कस्तो हुनुपर्ने, के हुन्, आज यसैबारे एकदमै सविस्तार साथ जानकारी प्रदान गर्नुभयो. र सर यसरी आकाशवाणी खरसाङसँग जोडिनु भएर हाम्रो कार्यक्रम शिक्षा ज्योति मार्फत हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हाम्रो युवा जमातलाई एकदमै राम्रो जानकारी दिनुभयो. यसको निमित्त हामी सम्पूर्ण आकाशवाणी खरसाङको परिवारको तर्फबाट हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै र मौका मिले फेरि भविष्यमा यस्तै नयाँ विषयहरूमाथि विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई हामी जानकारी गराउनेछौँ हजुरसँग भेट भएर भन्दै है. र हजुरको सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना गर्दै साथसाथै हजुरको हरेक कार्यहरू सफल हुन सक्छ.
2: आकाशवाणी समाचारको साथ म प्रशान्त कुमार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया. इनमें सड़क, बिजली और उद्योग सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल है. साथ ही प्रधानमंत्री ने ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन किया. प्रधानमंत्री ने आज हजीरा का दौरा किया और औद्योगिक तथा अवसंरचना कार्यों की समीक्षा की. प्रधानमंत्री आज दमन भी जाएंगे. असम मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया. गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली. राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस विस्तार के बाद असम मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने आज घोषणा की है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 3 में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है. एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है. भारत के यात्री वाहन बाजार में मई में लगभग 44 लाख वाहनों की बिक्री दर्ज की गई. ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है. सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज आय पर पूरी तरह से कर छूट दे दी है. ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी. सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है. वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा. मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह की आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट को भी दी गई है. भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार
3: After a detailed assessment,
4: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है. इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF
2: में विकास परियोजनाओं से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं. आइए सुनते हैं उनका संबोधन.
5: जनप्रतिनिधिगण और यहाँ उपस्थित सूरत के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, केम छो बजा अने आपलो सूरत मजा माने तू शू लई आयो जो भाई धन्यवाद दोस्त सरस मजारु चित्र बनायु देते हैं. जरा एसपी जना लोको आप भाई के भेट आप मांगे थे.
2: अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है. वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान

0: श्रोतागण सुन्नुहुँदै थियो भुटानी कार्यक्रम अन्तर्गत भुटानी गीत। अब केही क्षणमा सुन्न सक्नुहुनेछ समाचार।
1: नमस्कार, यो आकाशवाणी हो। अब देवेन थापाबाट समाचार सुन्नुहोस्।

0: कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोतागण सुन्दै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम युवावाणी। अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम चर्चा चौतारी।

0: सागर गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए विकास जितना जरूरी है उतना ही अहम है हमारे विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
0: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि BSF जहां जहां है, SSB जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट

0: प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
3: The negotiating team which came from
4: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
5: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा

0: बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says smart border project in its final execution stage, pilot rollout to be introduced next year.

सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। अमलतास की झालरों पर जब उतरती है चांदनी, हवा के झोंके कुछ और मुखर हो जाते हैं। ताल झूमता है, कुमुदनी हुलस जाती है, तब अचानक होठों पर कोई अधूरी सी बात चली आती है।

कहीं दिल जोड़ता है टूटे हुए तार को, तो कहीं दिल मचलता है बस एक इकरार को। कभी तो मिलता नहीं जरा सा करार, और कहीं छाया है नाजुक एहसासों का खुमार।

ये राज हैं ऐसे जो सरेआम बताए नहीं जाते, ये नखमे हैं दिल के जो हर सांस पर गाए नहीं जाते। इन्हें तो बस वही गा सकता है जिसके दिल में बेपनाह मोहब्बत हो और आवाज हो ऐसी पवित्र कि लगे स्वाति की कोई बूंद हो।

फासले कदमों के नहीं हो, बीच में कई बरस खड़े हो, रातों में जागी हुई आंखें हो, होठों पर खामोश हुए नगमे हो, तो भी कोई सुन ले तो ये नगमे फिर गा सकते हैं और उन आंखों में उतर सकती है नींद की परी।

टप टप कर स्मृतियों की बरसात होती है जब कभी। रात के आंगन का कोना कोना भीग जाता है। अंधेरे के सितार पर गूंज उठता है एक उदास राग और चांद अपने ख्यालों में डूब जाता है।